साया स्वाद प्रभ का रंग राच जन रहे गुर का बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाका संग तरह संसार जन का सेवक सोबड पागी जन का संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावा गुर प्रसाद नानक फल पावा सलोका आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जस सुनता।

का मन माना सो सेवक परमेश्वर की गत जाना सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर कौ बल जाओ सर्ब निदान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ भरम सहस सयान पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बडभागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करना गाने मन संतोख आत्म पति आने पूरा गुरा खेओ जाक मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिसलै मिलाए जेह बाए कुस्तत अनेक सत पुरख पूरन विवेक काहू बोलन पहुचित प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किनै न पाई अनक भगत बंदन नित करह चरण कमल हिरदय सिमरह साध बले हारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै मरसो होए उस पुरख का नाही कदे बिनाश

तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चेहन न जापता तब हरख सोग कहो किसा ब्यापता जब अपने आप पार ब्रह्मा तब मोह कहा किस होवत परमा आपन खेल आप वरतीजा नानक करना हार न दूजा जब होवत प्रब केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हरगम पार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रब सहज सुभाए तब शिव सकता कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरह तब कवन निडरा।

तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचरा गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपने आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कह हो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीसा, तह छल छिद्र लगत कहो कीसा, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसह भूख कमन तृप्तावै, करन करामन करना हार, नानक करते का नाहि सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्ब कला पह प्रवीन, तह वेद कतेब कहा को चीन, जब अपने आप उरतारा, तो सगन सगन कहा बिचारा, जह अपन ऊच अपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जन हो आप, जह छल छेद भेद समाया, ऊहा किसा व्यापत माया, आपस को आप है आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश, जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन चिंत किस लागा चिंता, जब जह अपने आप पति यारा, तह कौन कथा कौन सुनना हारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस कौ आप है पहुचा, जह आप रचियो प्रपंचकार, तेहो गुण मह कीनो बिस्थार, पाप पुन तह पई कहावत, को नरक को स्वर्ग बंछावताल, जाल माया जंजाल, हम मोह भरम पै भार, दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देखा, खेल संकोचा, तो नानक एका, जह अवगत भगत तह पाप, जह पसरा पासार संत प्रताप, दोहो पाख का पह तनी, उनकी शोभा उनहु बनी, अपह कौतक करंद चोज, अपह रस भोगन निर्जोग, जिस पावत सापन नाइल,

सेवक प्रवान अंतर्जामी पुरख प्रदान जैस मन बसा सोहोत निहाल ताका निकट नावत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान।

निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परमा साध नाम निर्मलता के कर्मा।

मुझ बरी है, मरण काल का त्रास में बरी है, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु करी हो रक्षा। राख ले हो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्म बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो, आदंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी यहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पछानता, चिटी ते कुंचरा सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, काट काट के पट पट की जाना, जाबद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह पारा। जाबा करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलता देह तर सब हूँ, जेते बदना श्रेष्ठ सब तारा, आप अपनी बूझो चारा, तुम सब ही तेरहत निरालमा।

दुख दुख ते लेह बचाई कृपा करी। हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखी इन को छय करता। श्री अस्तुज जब पय दय अल्ला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछ फल पावै सोई दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहे सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरतावई। दुख दर्द पौ निकट ना तिन नरके रहै हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस कुंती निकिहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार

तब जगत मैं जब तुम करहो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्या है संत, अंत लहंगे मुक्त फल पावहगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक बेसन महेसा, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रव सस क्रोर जलेश। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत ने।

मनियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखानियो। दोहरा

ठाकुर का पयो जिसका सब साधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उदारो। एह वस्ता तदी नह जाई नित नित रख उरतारो, तम संसार चरण लग तरीये सब नानक ब्रह्म पसार। सलोक महला पंजवा, तेरा किता जातो नाही, मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन।

सतनाम। जुगो जुग अटल शब्द गुरु दीन दुनिया के मालिक सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच आप सरबत संगतां जुड़ के अपने जीवन के समय नूं सफलियां कर रहे हो। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरी जाय जीओ। वडभागी हुंदे ने ओ गुरु दे प्यारे जो अपने जीवन दे कम्मां कारां नूं संकोच के सतगुरां दी शरण विच आउंदे ने। और यही साडे जीवन दा मनोरथ भी है। यह जीवन सतगुरां ने गुरु दे लेखे विच लाउण लई दित्ता है कि जिन्ना भी हो सके मन करके भावना करके समा हर वेले साडा मन सतगुरां दी याद विच रहे। और सतगुरां जी दी पवित्र गुरबाणी ये फरमान करदी है कि कलयुग में है कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। जो कीर्तन गुरु नानक देव महाराज जी ने सच्चे पातशाह जी ने परमात्मा की उस्तत विच कीता। घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा विसोआ। कीर्तन सतगुरां ने इस कलयुग के समय विच ऐसी दात बख्शिश कीती है ना, जो कीर्तन करता है और कीर्तन मन करके सुनता है सतगुरु जी कहिंदे ने उहदा इस संसार विच भी मुख उजला हुंदा है ते उस मालिक की दरगाह विच भी उसकी जय जयकार हुंदी है, उहदा जीवन सफला हो जाता है। क्योंकि कीर्तन साडे मन नूं, टुटे हुए मन नूं परमेश्वर नाल जोड़दा है। यह सब तो वड्डा रस्ता है पर भावना होवे। और महान गुरसिख धन धन बाबा बुढ़ा जी उन्हां दी याद विच ये समागम उलीके गए ने हर साल की तरह। और गुरु प्यारे सारे वीर बाबा बुढ़ा जी सोसाइटी अमेरिका वो सारे वीर ने रल के सारी सोसाइटी के वीर ने यह उपराला किया है संगत को जोड़न का। आओ मन गुरु चरणा नाल जोड़ के हाजिर रह के इत्थे सतगुरां दी शरण विच सतगुरां दे नाम नाल जुड़ जाइए। सारे सतगुरां दी बख्शी असीस फतेह दी सांझ पाउणी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरू वाहिगुरू। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लईं त्याए। हिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए साए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाए दसों ही पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप। हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार जी का ध्यान धरके बोलो जी। सतगुरां दे साजे निवाजे पंजां प्यारिया चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ पीता तिन्हां प्यारिया सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्धक केसां स्वासां नाल निभाया असह ते अकह कष्ट सारदे होए शहीद हो गए तिन्हां समूह पुरातन ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਭੁਚੰਗਣਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ।

जेहे बेदा और कते बा रूप रंग न जात पास हो जाने केह जे बात आत्मात न जात जा कर जन्म मरण विहीन चक्कर बकर फिरा चतर चक मानई पुरतीन लोक चौदह के बेख जग जाप ही जेह जाप आद देवनाद मूर्त थाप्यो सब जेह थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्ब बेसव रचियो सुन्यम भाव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख अदेस धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेस अंग राग नरंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तदायक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंग ही न भंग नातमेक पुरख पार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रत पार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब तेन पेख सर्ब शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक है नेत भक्त नेत कोट सिमरित पुराण शास्त्र नाभ ही बहु चित मद पार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा पारासन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान कालन पूत अंग अबा पंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्वा प्रणाडन दंड बाडा चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी सदिश दृश कृश भगवती छंद त्व प्रसाद कस्ते के आछज देश के आज पेश के आगंज कर्म के आज परम के आज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेभूत कर्ण के राजू प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप के अनुभव अनुप के आद देव है के आप भेव है के चित्रं विहीन के कै दीन के रोजी रजा करही मै रिहक के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अपुल गुनाह है के सहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र भेष के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र भान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीम के परमं फीम के आकल अलाम के साहिब कलाम के हुसनुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम श्री खुत मुदाम गनीमुल सिकस्ता गरीबुल परस्ता बिलंदुल मकान जमीनुल जमान तमीजुल तमाम रुजू अल निदान हरीफुल अजीम रजायक यकीन नेकुल तरंग हैं भेद हैं भंग हैं जीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त बेपूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं
सो जुगत सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं भेदी नूप हैं समस्तो प्राज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाद स्वरूप हैं गाद हैं नूप हैं ओं आद रूपे अनाद स्वरूप नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवरगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसुरभानुराग त्रिपुक्त स्वरूप हैं छज हैं छूत हैं के नरकं प्रणास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रयुक्त अनूप हैं चाचरी छंद भंग हैं नंग हैं पेख हैं लेख हैं भ्रम हैं कर्म हैं नाद हैं जुगाद हैं अजय हैं वै हैं भूत हैं तूत हैं नास हैं उदास हैं तंद हैं बंध हैं भक्त हैं विरक्त हैं नास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं लिख हैं दिख हैं लेख हैं पेख हैं टाह हैं गाह हैं असंभ हैं गंभ हैं नील हैं नाद हैं नित हैं सुनित हैं जात हैं जाद हैं चर्प छंद प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वप्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्रीक हैं मितो मीक हैं सदैवं प्रभा हैं जा हैं अजा हैं भगवती छंद त्वप्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं मेसुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरी फुल सिकन हैं हिरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सरबुल गवन हैं मेसुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परमीस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेसल लेख हैं मेसुल पेख हैं जमीनुल जमा हैं मीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के मित्तो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मित्तो विभूत हैं के मित्तो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के मित्तो अपंग हैं मदपार छंद त्वप्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बरागंज हर नर प्रभांज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंडन पवनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आन छ्यजांगा सना भंग उपमा पार गत मितो उदार जल थला मंड दिस वेसा भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभवनाथ त्रित तर तुरास आ जान बाहु एक सदा हो ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबरा काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छ्यजगात आज जना बात अन झंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ करमान ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाला है अरकाला है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमान्या है जग जान्या है सर्वं पर हैं सर्वंकर हैं सर्व पास्या हैं सर्वनास्या हैं करुणा कर हैं विश्वम पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंड स हैं कलखंड स हैं पते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जाप हैं थपा थप हैं कृता कृत हैं मृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणा कृत हैं कृता कृत हैं धरणी तृत हैं मतेश्वर हैं परमेश्वर हैं
अकृता कृत है मृता मृत है जबा कृत है मृता मृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणाला है निरपनायक है सर्व पायक है पवपंजन है आर गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बास है जस के जस है पोजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आश्वासे नमो बांक बांके भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजैल पै बै पू अजू नास अकास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख भेख नाम अकाम अगा हटाह नाथ परमाथे जोनी मोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे करमंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामिंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम भव सुभं सर्व

जिस तू देहे सोई जन पावै, पावै ता सो जन देहे, जिस नौ होर क्या करहे बेचारे आ। एक भरम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सुवारे आ। गुर प्रसादी मन भया निर्मला जिना भाणा पावे, कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी कित द्वारा पाई है। तन मन धन सब सौंप गुर का हुक्म मन्ने पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गाव हो सच्ची बाणी, कह नानक सुन हो संत हो कथे हो कथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किन न पाया, चतुराई न पाया किन, तू सुन मन मेरे आ। ए माया मोहनी जनेत परम भुलाया, माया ता मोहनी तिना कीती जिन ठगौली पाई आ। कुर्बान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया। ए मन प्यारे आ तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा, चला नाही तेरा नाले साथ, तेरा चला नाही तिस नाल क्यों चितलाई है। सकम मूले ना कीचै जे संत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगमा गोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किना तेरा, अपना आप तू जान हे। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख बखान है। आख है ता वेख है सब तू है, जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया। स्वर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया। जी अजंत सब तुद पाए, अक वेख पर सुनाया, लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिस नौ आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज त्रिशना, बहुत नाही बोलना। खन्य हो तिखी वल हो निकी, एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चल है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिब तू चलाए हे तिव चल है, जिना मार्ग पाव हे कर कृपा, जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे, जिस नौ कथा सुनाए हे अपनी से गुरुद्वारा सुख पाव हे। कह नानक सच्चे साहिब जब पावै तिव चलाव हे, एहो सोहेला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहेला, सतगुरु सुनाया, एहो तिनकै मन वसया जिन तुरहु लिखिया आया। एक फिरह कनेरे करह गल्लां, गल्ली किनै ना पाया, कह नानक सबद सोहेला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना, जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए, गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो, पवित संगत सबाईया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज न उपजा, वैण सह जाए सहसा न जाए, नह जाए सहसा किता संजम रहे कर्म कमाए। सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धोव हो शब्द लग हो हर स्यो रह हो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए, सहसाए विजाए। जी अहो मैले बाहर हो निर्मला, बाहर हो निर्मला जी अहो तमैले, तिनी जन्म जुए हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मन हो विसारिया। वेदा मह नाम तुम सो सुनह नाही, फिरह जो बेतालिया, कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जी अहो निर्मला बाहर हो निर्मला, बाहर हो ता निर्मला जी अहो निर्मला, सतगुर ते करणी कमाणी, कूड़ की सोए पहुँचा नाही, मनसा सच समाणी।
ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀ ਹੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ।

पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खपे खार कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार किसान की जय दोस्त।

सच काल कुड़वा कल कालख पिता दी बीज पत लैब गैब कुदा जे कोहे तो गैर तिहुर तो होए नानक पाए बारा कोरे रंग न सोए पै विच खुम चढ़ाई है शर्म पातन होए नान भक्ति जे रुपए कूड़े सोए न कोई महला पहला लव पाप दो राजा में था कूड़ो आशिकदार काम नहीं तो पछी है बह बह करे विचार अंधी रेत ज्ञान विवनी पाए परे मरदा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत जसन जे

0: दुखदारू स्वरूप है जहाँ सुखतामना होई, तू करता करना में नाई जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंतर जाई लिखिया रहा, जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब से सवाल जिनकी ती सपार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहे आ। महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्मणाय खत्री शब्दं सूर शब्दं सूर दर्शतु प्रकृता है सर्व शब्दं एक सब...

प्रबल चंड कौशिक ओभारा हो खटे ओ भोरा नंद गाए अष्टमाल कौशिक सिंह लाए उन्हें आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोत उठे तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सर सही रिलै पार जा संग लाई पांचों हर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान ओ आए बिनोदा गावें सरस बसंत कमोदा

कमल कुसम चंप के नामा गौरा कांद्रा कल्याणा अष्ट पुत्र दीप के जालना शामिल श्री राग में गावे

जप आद सच जुगाद सच पी सच नानक होसी पी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण जिहड़े बच्चों ने गुरमंत्र का वाहिगुरु का सिमरन करना वह शुरू कर लो। जिहड़े बच्चे वाहिगुरु का सिमरन करना जिन्होंने

0: अकाल मूरत
1: अजूनी
0: सहपम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच
1: नानक होसी पी सच।
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये बच्चों ने आप जी ने नोट किया होगा जिसले मूल मंत्र का पाठ इन्होंने बच्चों ने किया है तो इन्होंने जो उच्चारण है वो शुद्ध उच्चारण के नाल ये बच्चों ने पाठ किया। कितने विश्राम देना है तो उच्चारण जिमें सब तो पहला पढ़ने एक ओ अंकार कई एक अंकार बोल देते हैं पर एक करैक्ट इन्होंने बोला एक ओ अंकार इदा बोलना एक ओ अंकार ये शुद्ध उच्चारण है। तो आप बच्चों का मुकाबला भी रखा हैगा नवंबर के गुरु नानक साहब के गुरपुरब के समर्पित बच्चों जपजी साहब का शुद्ध उच्चारण तो कंठ ये मुकाबला आप रखा है इस साल भी। तो असी पौड़ियाँ बच्चों अलॉट कीतियाँ एज वाइज छोटे बच्चे आ पहली पौड़ी हैगी है फिर जो जो बच्चे व्डे है उन्होंने कोर्स उत्ते जाते तो पौड़ियाँ वही जा तो वो बच्चों ने शुद्ध उच्चारण सीखना तो नाल कंठ करना है। तो इस रिसोर्स भी नाल भेजे हैं यूट्यूब के लिंक भी नाल भेजे हैं जिते बच्चे बैठ के सुन के शुद्ध उच्चारण किमें करना है जपजी साहब पाठ वो भी सीख सकते हैं। तो यह बेनती है कि मापियां नूं कि बच्चियां नूं थोड़ा साइम टाइम आप दे के घर भी तो बच्चे आप शुद्ध उच्चारण के नाल जपजी साहब जिते कंठ करना है उस नाल उच्चारण शुद्ध करना भी बहुत जरूरी है। ये आप जी ने बेनती प्रवान करनी। दूसरा है कि जिसले आप बच्चे स्कैनर से हाजिरी ला लेंगे हैं तो असं देखिए कई बार मापे बच्चों लंगर हाल के लंगर छकनी लै जाते हैं तो मेरी बेनती है कि आप जी ने लंगर छकना है तो 9:50 तो पहलों पहलों आप अपना लंगर पानी छक के वेले होके फिर आपने अटेंडेंस स्कैन करनी है। परपज़ अपना है कि बच्चे इतने आन बैठन असैम्बली दे विच ते गुरु के चरणों के बैठना सीखन वह सिमरन करना सीखन मूल मंत्र का पाठ गुरमंत्र का पाठ करना सीखन गुरबाणी के कीर्तन सरवन करन ताकि उन्होंने भी यही प्रेरणा मिले ये सब कुछ करन दी। तो ये अपना पर जे आप लंगर हाल बैठ जाने जाके तो ये अपना परपज़ लॉस्ट हो जाता है। तो बेनती है मापियां नूं कि लंगर पानी 9:50 तो पहले पहले छक के आप जी ने बच्चों इत्थे लेके आना है। तो जिवें आपां हर महीने जो पहला हफ्ता हुंदा अपना उदो आपां जिहड़े बच्चों का जन्मदिन पिछले महीने हुंदा उन्हां दी अरदास करदे हाँ। अरदास का परपज़ यही हैगा कि बच्चे नूं आदत पवे कि असीं जो भी मंगना गुरु ग्रंथ साहिब जी कोल जो समर्थ हन पूर्ण हन इन्हां कोल ही मंगना है। होर किसी अनमरदे जो इत्थे आपां देखदे हां सभ्यता के मुताबक असीं बर्थडे मनाते हाँ पर सब तो जरूरी सतगुरों के अगे अरदास करनी अपने एज ए सिख अपना फर्ज बनता है कि असी उस वाहिगुरु का शुकराना भी करिए ते अरदास जो भी मंगना है उस गुरु के कोलों असी मंगीए बच्चों को भात पानी हैगी है। इस करके असी स्कूलों में उपराला करते हैं कि जिहड़ा बच्चों का जन्म पिछले महीने हुंदा वो नैक्सट मंथ जो पहला हफ्ता है संडे नूं आप बच्चे अरदास करते हैं। अज आप उन्होंने बच्चे अरदास करेंगे जिन्हों का जन्म सितंबर के महीने होया अक्तूबर का पहला हफ्ता जो है संडे है वो अभी उन्होंने अरदास आप करनी उन्होंने नाम हैं। मैं बेनती करा बच्चों जो मैं नाम करा जिते हाजिर हैं इतने आगे खड़े हो जाए तो जल्द आप अरदास करा तो नाल बच्चे खड़े होने चाहिए हैं। अभिजोत सिंह आसीस कौर ढिलों दर्श सिंह दृश सिंह कलकत एशलीन कौर फतेहबीर सिंह फतेह सिंह गुरमन भारद्वाज गुरनदर कौर हरशांत सिंह बापला इनायत कौर जपमन कौर कीरत कौर मन मनिंदर सिंह मेहर कौर प्रभजोत कौर रेहोन रॉल्स सेवरीन कौर परहार ਸਹਿਜ ਕੌਰ, ਸਹਿਜ ਕੌਰ ਚੋਕਰ, ਸਿਮਰ ਕੌਰ, ਤਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਥਾਰੂ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

0: एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस दिठा है सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है कर नौनिद आवैताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज। सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार का ध्यान तर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिना प्यारिया सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने तरम हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लवाईया चार खड़िया ते चढ़े तन आर्या नाल चराए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तरम नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाया तिना दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। पंजा तख्तां अते सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फते बिरत की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन इश्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल। तरम का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद्दा रखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जियो। जेड़े गुरुद्वारियां गुरतावां तो पंथ नू विछोड़िया गया है तिना दे खुले दर्शन दी दा सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे नमाणियां दे माण ने ताणियां दे ताण ने ओटियां दी ओट। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी अगे गुरमत खालसा स्कूल रेंटन दे बच्चों की जन्म दिन की अरदास बेनती है जी। जिन्हें बच्चों का जन्म सितंबर दे महीने विच होया है नाम आप जानी जान हो उन्हना बच्चों उत्ते मेहर भरिया हाथ रखो जी। गुरमत अनुसार कारज रास करने दुनियावी अते गुरमत की विद्या का तारनी बनाना जियो। सारे बच्चों मापिया अते सरबत संगत की हाजरी प्रवान करनी जी। हुईया बेअंत पुलां बख्श लैनिया जी। सही प्यारे मेलो जन्म लिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा पला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पई अकाल की
1: चलायो पंथ
0: सब सिखण को हुक्म है।

सदा कुर्बानी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है करनो निदा वैताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसों ही पातशाही आंदे आत्मक सबरूप।

0: नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे।

अपने आप साजियो अपने रचियो नाओ दो ही कुदरत साजियो करा सिं डिठो चाओ दाता करता या तो तुझ दुवे परे फसाओ तू जानो ही सबसे देह लैसे जिंद कवाओ करिया सन डिठो चाओ करिया सन डिठो चाओ।